ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के 5 दिन बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,700 से अधिक हो गई है और इसके और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जीवित बचे लोगों की बहुत बड़ी तादाद को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। बुधवार को वेनेजुएला में आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 27 देशों से 2,200 से अधिक बचाव कर्मी वेनेजुएला भेजे गए हैं, जो इन भूकंपों के बाद लगातार आ रहे झटकों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश के काम में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा, कम से कम 2,500 इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह से ढह गई हैं। हम 10,000 बॉडी बैग मंगवा रहे हैं, जिस पर यहाँ के अधिकारी भी सहमत हैं। ब्राज़ील से 2-1 से हारने के बाद जापान पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान का मुकाबला सोमवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में 6ठी रैंकिंग वाले ब्राज़ील से हुआ। गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए ब्राज़ील ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन जापान के गोलकीपर सुजुकी ज़ायोन डटे रहे। 29वें मिनट में सानो काइशू गेंद पर लपके और मैदान में तेजी से भागते हुए उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से दाहिने पैर से जोरदार किक लगाकर जापान के लिए पहला गोल किया। हाफ टाइम तक 1-0 से पिछड़ रहे ब्राज़ील ने दूसरे हाफ की शुरुआत में पेनल्टी बॉक्स में लगातार क्रॉस भेजकर दबाव बढ़ाया। 56वें मिनट पर कासेमीरो ने बाईं ओर से आए क्रॉस को सिर से मारकर गोल दागा और ब्राज़ील को बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद तानाका आओ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में नाकाम हुए, जिसका फ़ायदा उठाकर गैब्रियल मार्टिनेली अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागने में कामयाब हो गए और इस तरह जापान का नॉकआउट राउंड में पहली जीत दर्ज कराने का 5वां प्रयास एक बार फिर विफल रहा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि उनकी सरकार विदेशी निवेश की और बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रही है। ताकाइची ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। ताकाइची ने सोमवार को नवगठित विदेशी निवेश समिति की पहली बैठक को संबोधित किया। मई में विदेशी मुद्रा विनिमय एवं विदेशी व्यापार अधिनियम में संशोधन पारित होने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। ताकाइची ने कहा, हम संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की जांच क्षमता सुधारते हुए विभागों के बीच समन्वय की कमी से बचना चाहते हैं। क्षमता सुधारने के लिए सरकार जानकारी साझा करने की व्यवस्था को समग्र रूप से मजबूत करेगी। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय समिति की सह अध्यक्षता करते हुए नियमित बैठकें आयोजित करेंगे। समिति का प्राथमिक कार्य सरकारों और निवेशकों के उन प्रस्तावों की समीक्षा करना है जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ खास उद्योगों की जापानी कंपनियों के शेयर प्राप्त हो सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए बुधवार से भारत की यात्रा कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ताकाइची की मोदी से बृहस्पतिवार को मुलाकात होने वाली है। शिखर बैठक के मौके पर जापान और भारत आर्थिक सुरक्षा व एआई पर दस्तावेज जारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं। चीन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा संबंधी दस्तावेज में संभवतः दोनों देशों द्वारा आर्थिक दबाव का विरोध करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी निजी समन्वय को प्राथमिकता और बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जा सकता है। एआई संबंधी दस्तावेज में साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। इसमें डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की बात भी शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि ताकाइची जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च आर्थिक विकास बनाए रखने वाले देश भारत के साथ सामरिक साझेदारी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। जापान की प्रमुख वाहन कंपनियों ने मई में चीन में नए वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बिक्री पर असर पड़ा। चीन में वाहन बेचने वाली जापान की 5 प्रमुख कंपनियों में से 4 का कहना है कि उनकी कारों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। सुबारू की बिक्री में 53.3%, जबकि होंडा की बिक्री में 48.6% की भारी गिरावट आई। निस्सान की बिक्री में 34.9% और टोयोटा की बिक्री में 31.7% की गिरावट देखी गई। केवल माज़्दा की बिक्री में 4.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। चीन में पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि दूसरी ओर ईवी बाजार में विस्तार हो रहा है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो में मंगलवार को जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले 162 के स्तर पर रही, जो लगभग 40 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आखिरी बार दिसंबर 1986 में येन डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ था। डॉलर की मजबूती को इन अटकलों से बल मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिका में रोजगार आंकड़ों में भी सुधार आ रहा है। इसके विपरीत जापान में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी की गति अनिश्चित है, जिससे इस धारणा को बल मिल रहा है कि अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर जल्द कम होने की संभावना नहीं है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।